0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: આકાશવાણીનો આ ભુજ કેન્દ્ર છે. શ્રોતા મિત્રો, પ્રસ્તુત છે વિચાર બિંદુ. વિષય છે ઉપાસના. પઠન જિજ્ઞા મહેતા.
3: વિચાર બિંદુ.
4: અમુક વિશેષતા કે ગુણ હોય તેનાથી મનુષ્ય શીલવાન ન ગણાય. સોક્રેટિસે કહ્યું છે, શીલનો વિકાસ એ જ સાચો વિકાસ છે. શીલમાં સમગ્ર વ્યક્તિત્વનો આંતરબાહ્ય વિકાસ અપેક્ષિત છે. કોઈ સાધુએ સંસાર ત્યાગ્યો હોય પરંતુ ક્રોધ કે અહંકાર ન છોડ્યો હોય તો એ શીલવાન ન ગણાય. શીલની ઉપાસના એટલે સમગ્રતાની ઉપાસના. એ માટે જાતને ઓગાળવી પડે. જાતને અર્પણ કરવી એટલે અહંકાર અને રાગ દ્વેષના કોચલાને ભેદીને સર્વવ્યાપક તત્વની ઉપાસના કરવી. આવો મનુષ્ય શુદ્ધ અને મુક્ત બની શકે છે. એકાદ ગુણથી સંતુષ્ટ ન થવું જોઈએ, નહીં તો આપણું દર્શન એકાંગી રહે, શીલ અપૂર્ણ રહે. આપણા પ્રાચીન ગ્રંથોએ મનુષ્યના સર્વાંગી વિકાસ ઉપર ભાર મૂક્યો છે. એટલે જ ભક્ત પ્રીતમે ગાયું છે, હરિનો માર્ગ છે શુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોને. પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ જોને. મસ્તક મૂકવું એટલે કાપી આપવું એવો સ્થૂળ અર્થ નથી. અહંકાર દાનનો, કીર્તિનો કે કોઈ એકાદ ગુણનો પણ હોઈ શકે છે. અહંકારનું વિસર્જન થાય ત્યારે હૃદયમાં જ્ઞાનનો, પ્રભુનો વાસ થઈ શકે છે. એક મ્યાનમાં બે તલવાર રહી શકતી નથી, તેમ હૃદયમાં રામ અને અભિમાન સાથે રહી શકતા નથી. એટલે જ જે જાતને ખોય છે તે જ પ્રભુને પામે છે.
3: વિચાર બિંદુ.
2: આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્રનું પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો. શ્રોતા મિત્રો, હવે પ્રસ્તુત છે ભક્તિ સંગીતનું કાર્યક્રમ અર્ચના. પ્રથમ સાંભળીએ રવિ બારોટના કંઠને.

भगवान शिव पार्वती को काक भुशुंड की सिद्धत्व प्राप्ति की कथा सुना रहे हैं। सुमेरु पर्वत के और उत्तर में एक अत्यंत सुंदर और मनोहारी नील पर्वत है। इस पावन स्थल पर काक भुशुंडी हरि का भजन, जप और यज्ञ तथा मानस पूजा करते हैं और वहां पहुंचे श्रद्धालु पशु पक्षियों को हरि कथा सुनाते हैं।

0: महाराष्ट्र राज्यं च द्वाविंशत्यधिक सप्तसहस्रकोटि रूप्यकाणि अलभत। ग्लास्गो नगरे प्रवर्तमानासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतम् एकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5000 मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धासु भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स् इत्येतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉट्पुट् F57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्णपदकं, शुभम जुयालः च रजतपदकं प्राप्तवान्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर इका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल

0: लगाने के लिए। बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक

0: सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के

0: साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाई। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं। डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
4: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak, discussion forums, art competitions and community engagement programs. The initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their communities. With Soumya Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister

0: आकाशवाणी भूज फोन इन आपनी पसंद।
1: हाँ जी नमस्ते,
0: बोलिए।
1: हाँ जी योगेश जांगड़े भी मैं करा छत्तीसगढ़ से।
0: अच्छा अच्छा, बोलिए योगेश जी, बारिश कैसी है छत्तीसगढ़ में?
1: बारिश अभी 3-4 दिनों में थोड़ा ठीक हुआ है।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। और गाना कौन सा सुनेंगे? अभी तो मौसम बहुत सुहाना होगा बारिश की वजह से।
1: जीवन मृत्यु से सुनवा देंगे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा,
0: रिमझिम बरसता सावन होगा। क्या बात है, बड़ा प्यारा गाना चुना आपने, जरूर सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, फोन करते रहिएगा।

0: नमस्कार, फोन इन आपने पसंद
1: जी बहन प्रणाम। नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मैं राजू यादव, ग्राम उपरेखा श्रीरामपुर डेरा सरीला राज मस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: बोलिए राजू जी, कौन सा गाना सुनेंगे
1: जी? कोई भी गीत चला दीजिए, कुछ लाइने अगर इजाजत हो तो कह दें।
0: हाँ बोलिए, बिल्कुल जरूर बोलिए।
1: हमारी गलतियों से कभी दूर ना जाना, हमारी शरारत से रूठ ना जाना, आपकी चाहत ही हमारी जिंदगी है, जिंदगी में बहना जी हमें भूल मत जाना।
0: अरे बाबा क्या बात है, हमारे प्यारे श्रोताओं को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, और आप भी हमें याद रखिएगा और फोन करते रहिएगा, ठीक है
1: जी बहन?
0: ओके राजू भाई, नमस्ते
1: जी बहन, प्रणाम
0: प्रणाम।

0: नमस्कार, फोन ही ना अपनी पसंद।
1: हेलो बहन जी, नमस्कार। बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ। बहन जी, गीत सुनना था।
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म है जी सच्चा झूठा।
0: अरे वाह, और गाना कौन सा?
1: गाना है जी रफी और लता जी की आवाज में, उसके बोल मैं तरन्नम में बताना चाहूंगा।
0: बोलिए, जरूर बताएं।
1: जो ही तुम

0: वादा है यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
1: अरे वाह क्या बात है। तो आपकी पसंद का ये वाला गाना कल के कार्यक्रम में आप जरूर सुनिएगा।
0: जरूर जरूर बहन जी जरूर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।

0: मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
0: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है।

0: भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसुलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: The Prime Minister added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. He said that weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. The participants included governors of states, chief ministers of states, My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. Indian Ambassador to the US Vinay Mohan Quatra has stressed that Pakistan must first dismantle the terror infrastructure that it has built if it wants India's cooperation on bilateral issues. Pakistan had recently convened a conference in Islamabad to protest India's decision to hold the Indus Waters Treaty in abeyance. In an article, Mr. Quatra criticized a former foreign minister of Pakistan for threatening war against India if Islamabad's demands on the Indus River system are not met. Ambassador Quatra stated that threatening war against India to distract from its internal problems has become a standard policy option for Islamabad. Uzbekistan's Minister for Foreign Affairs Saidov Bakhtiyor Odilovich will undertake an official visit to India from today until the 5th of this month. According to the Ministry of External Affairs, during his visit, Odilovich will call on President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan and also meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. He is also scheduled to attend a business forum in Delhi. Amid widespread havoc caused by heavy rain in Kerala, the India Meteorological

नमस्कार फौजी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज केंद्र, और आप जुड़े हैं हमारे जय भारती कार्यक्रम से। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है हम सबके लिए, है ना? तो जी हाँ, मैं आपकी रेडियो दोस्त मोनिका त्रिवेदी आप सबका इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सबको फ्रेंडशिप डे की मुबारकबाद दे देती हूँ। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज बात करेंगे, कई ढेर सारी बातें करेंगे और सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे नगमे। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा खास कार्यक्रम है फ्रेंडशिप डे का, उसी से चलो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हंसना, रोना, रूठना, मनाना, हर पल में जो साथ निभाता है वो दोस्त के बिना अधूरी है ये जिंदगी। आप सभी को फिर से इस फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई अपना दूर हो या दिल के सबसे पास हो तो हमारी हर खुशी और हर गम में जो याद आता है ना, वही सच्चा यार होता है। दोस्ती में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता, कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होता। ये तो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें जानते हुए भी कि सामने वाला बंदा कैसा है, फिर भी हम उसे अपना लेते हैं। वो जैसा है वो फिर भी हमें इतना ही प्यारा लगता है। ये वो रिश्ता है जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सदियों से इस रिश्ते के कई किस्से हमने सुने हैं। श्री कृष्ण जो द्वारका के राजा थे और सुदामा जो एक गरीब ब्राह्मण थे, फिर भी उनकी दोस्ती में अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। कृष्ण ने सुदामा के प्रेम से लाए हुए थोड़े से पोहे को बड़े प्यार से खाया था। ये रिश्ता सिखाता है कि सच्ची दोस्ती मन से होती है, धन या पद से नहीं। आइए सुनते हैं लगान फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और सुखविंदर सिंह ने। गीत के बोल है जावेद अख्तर के और संगीत है शंकर और शान के।

दोस्तों, भारत के इस इतिहास की बात करते करते मुझे याद आया कि मैं आपसे ये बात कैसे नहीं कहती कि आज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल अपने नाम करने के लिए अंतिम राउंड में शानदार वापसी की और कांटे की टक्कर वाले इस मुकाबले को एक यादगार जीत में बदल दिया है और इस अभियान में भारत को बॉक्सिंग का 6ठा गोल्ड मेडल दिलाया है। संयम, दृढ़ संकल्प और एक चैंपियन के इस जज्बे का जो बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है, उस प्रदर्शन ने भारत वर्ष में त्योहार का माहौल खड़ा हो गया है। दोस्तों, इनके साथ साथ मैं अंकुश पंघाल को कैसे भूल सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अंकुश पंघाल ने आत्मविश्वास, कौशल और नीडर इरादे के साथ फाइनल में दबदबा बनाते हुए पुरुषों के 80 किलोग्राम का खिताब जीतने के लिए एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उनकी यह जीत भारत के लिए बॉक्सिंग का 7वां गोल्ड मेडल लाती है, जो टीम इंडिया के इस शानदार अभिनय में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ती है। आइए सुनते हैं मैरी कॉम का ये गाना विशाल ददलानी और सलीम मर्चेंट की आवाज में। गीत के बोल है संदीप सिंह के और संगीत है शशि सुमन का।

दोस्तों, आज के इस तनाव भरे माहौल में हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने अपने दोस्तों के साथ कब बात की थी, और फिर हमें याद आती है उन दिनों की जहां हम एकदम बेफिक्रे होकर

अपने दोस्तों के साथ जो हमने वक्त बिताया था। आए कुछ ऐसा ही माहौल दिखाता हुआ ये गाना हम सुनते हैं। फिल्म है छिछोरे और उस आवाज है तुषार जोशी की, संगीत है प्रीतम का और इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

यार अगर रूठ जाए तो समझो हमारी धड़कन ही थम गई। अभी आपने सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का ये गाना सुना, जिसे गाया था अरिजीत सिंह और रोचक कोहली ने। पर अगर यार हमारा मान जाए तो फिर क्या बात है। आइए सुनते हैं थ्री इडियट्स फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान ने।

और दोस्तों सुनते हैं हमारा आखिरी गाना, फिल्म है कॉकटेल जिसे गाया है मोहन कानन और शिल्पा राव ने।

जय भारती कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज केंद्र से।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
0: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में

0: गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती

पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आज हम जो गीत आपको सिखाने जा रहे हैं उसका भाव अर्थ है, भारतवर्ष सांस्कृतिक दृष्टि से सदा से एक रहा है, आगे भी एक सूत्र में बंधा रहेगा और हम मिलजुल कर देश का विकास करेंगे। विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हम अपनी एकता के बल पर अवश्य ही दूर करेंगे। गीत लिखिए, गीत के बोल हैं, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। क्या लिखा?
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे, यह स्थाई है। पहला अंतरा लिखिए, अंतरे की पहली लाइन है, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, मिलकर कदम बढ़ाएंगे। दूसरी पंक्ति है, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हमको रोक सके ना कोई, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग हैं। मैं पहला अंतरा दोबारा पढ़ता हूँ, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग हैं। लिखा?
1: जी सर।
0: आप पढ़िए पहला अंतरा,
1: मिलकर कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको रोक सके ना कोई, हम वायु का वेग हैं।
0: ठीक है, यह पहला अंतरा है। इसके बाद हमारी स्थाई आएगी, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। दूसरा अंतरा लिखिए, हम किसी से कम नहीं। क्या लिखा?
1: हम किसी से कम नहीं।
0: हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तीसरी पंक्ति है, एक एक मिल ग्यारह होते, एक एक मिल ग्यारह होते,

बड़े दिलेर हैं, हम सब बड़े दिलेर हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूं दूसरे अंतरे को, हम किसी से कम नहीं

0: बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे। तीसरी पंक्ति है, कोई मानव दुखी रहे ना, कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी टेर है। लिख लिया
1: जी सर।
0: अब मैं पढ़ता हूं, आप देख लीजिए। जीवन सरस बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी टेर है। ये था हमारा तीसरा अंतरा। फिर हमारी स्थाई आ जाएगी, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। ठीक है
1: जी सर।
0: अब मैं पूरा गीत पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। हम एक हैं,
1: हम एक हैं,
0: हम एक थे,
1: हम एक थे,
0: हम एक रहेंगे,
1: हम एक रहेंगे,
0: मिलकर कदम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको रोक सके ना कोई,
1: हम वायु का वेग हैं,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। दूसरा अंतरा है, हम किसी से कम नहीं,
1: हमें किसी का डर नहीं,
0: एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं, हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे, जीवन सरस बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, कोई मानव दुखी रहे ना,
1: ऐसी सबकी टेर हैं,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: लिख लिया आपने ये गीत?
1: जी सर।
0: अब इस गीत को सीखते हैं।
2: तो गीत शुरू करें?
3: जी सर।
2: ये गीत ताल कहरवा में निबद्ध है, तो हम पहले इसका स्थाई सीखते हैं। स्थाई सा से शुरू

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्तों का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही

0: आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री शक है, पंजाब की 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा ना करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकालने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.censet.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित जनगणना कर्मी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक गृह सूचीकरण अभियान और आवास जनगणना का संचालन करेंगे। इस दौरान पोर्टल पर भी दी गई जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान देश से 100 से अधिक जीआई पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादकों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश के कोयला उत्पादन में जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 में 7.51% की बढ़ोतरी हुई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जुलाई में देश में कुल कोयला उत्पादन 69.75 मिलियन टन रहा। जुलाई 2026 में कोयले की आपूर्ति जुलाई 2025 के मुकाबले 17.34% अधिक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने बताया कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कांगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। संगठन के अनुसार 30 जुलाई तक इबोला के 3,605 पुष्ट मामले और 1,587 मौतें दर्ज की गई हैं। केरलम में मूसलाधार वर्षा से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप
2: Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
0: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
2: Mr. Modi added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: More than 1 crore youth from 28,000

0: गुलमोहर कार्यक्रम नी अंत में आपने संभळावीए बंटी और बबली फिल्म नु आ गीत लॉय मेंडोन्सा सौम्या राव अने शंकर महादेवन ना स्वर मां जेमां संगीत छे शंकर एहसान लॉय नु अने शब्दों छे गुलजार ना।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: नमस्ते, ये आकाशवाणी आए हाने दवा पिंकी बेलानी खां खबरों बुदना सबंगा पहरी खास खास खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तरक्की भारत जो मकसद हासिल करने ला नौजवानन के शारीरिक तौर ते चुस्त मानसिक रूप से मजबूत ए आत्मविश्वास से भरपूर रहने जो सॾु ॾिनो आहे। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुभ शुरुआत कंदे श्री मोदी चयो नौजवानन के नशे का परे रहंदे सेहतमंद जीवन शैली अपनाइण घुर्जे। केरलम में तेज बरसात वगे जान माल जो नुकसान, 8 मानू मौत जो बक बणिया, हजारे मानून के राहत शिविरन में पहुंचायो वियो। रांदन में बैडमिंटन में भारत जी तन्वी शर्मा ताइपे ओपन में पैंजो पहरियों BWF वर्ल्ड टूर खिताब खटियो। ग्लासगो कॉमनवेल्थ रांदन जो अज आखिरी डी भारत 13 सोनन तमगन समेत कुल 39 तमगा खटने चौथी जायते रहो। हाने खबरों तफसील वार बुदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तरक्की भारत लै नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान जे नई दिल्ली में शुरुआत कई। वर्चुअल नमूने प्रधानमंत्री चयो तरक्की भारत लाइ नौजवानन जो शारीरिक तौर ते सेहतमंद, मानसिक रूप से मजबूत ए आत्मविश्वास से भरपूर होजन जरूरी आहे। प्रधानमंत्री चयो त
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और

0: से दूर रहें और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री चयो त नशा मुक्ति लाइ 100 हफ़्तनि जो जन भागीदारी अभियान शुरू कयो वेंदो ऐं मुल्क भर में हर आर्तवार ॾहाड़े हफ़्तेवार कार्यक्रम थींदो। प्रधानमंत्री चयो त नशीलनि पदार्थनि जी आदत माण्हुनि खे मक़सद खां भटकाईंदी आहे ऐं इन सां मुल्क जी ताक़त पिणु कमज़ोर थींदी आहे। प्रधानमंत्री चयो त
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: केरलम में बरसात जी रफ़्तार घटिजी आहे जंहिं सां केतिरनि ज़िलनि में माण्हुनि खे राहत मिली आहे। आबहवा महकमे अॼु 12 ज़िलनि वास्ते ऑरेंज अलर्ट ऐं 2 ज़िलनि में येलो अलर्ट जारी कयो आहे। राज्य जे 10 ज़िलनि में सुभाणे ताईं येलो अलर्ट लागू रहंदो। समूरे राज्य में कल्ह खां वठी हाणे ताईं बरसाति सां लाॻापियल वाकनि में 8 माण्हू मौत जो बक बणिया आहिनि। पेश आहे हिकु अहिवालु।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: आज गुजरात जे कच्छ बनासकांठा पाटण महसाणा मोरबी सुरेंद्रनगर ए साबरकांठा में तेज बरसात जा इम्कान हैं। इले ताई राज्य में सब का वधिक 95.3% बरसात दर्ज गुजरात में दखण गुजरात में दर्ज थी है। इन विच में NDRF ए इंतजाम दौरान बचाव अभियान हलाया पो वे। मुहाणन के भी अज समुंड में न वन की सलाह दिनी वही है। इन विच में आबहवा महकमे अज कर्नाटक, केरला, माहे, राजस्थान ए ओलह बंगाल के हिमालय से लग में आल इलाकन में तेज बरसात जो ऑरेंज अलर्ट जारी कयो आहे। ही खबरूं तवां आकाशवाणी तां बुधी रहा हो। ही खबरूं तवीं असांजे YouTube चैनल एयर न्यूज गुजरात ते पिण बुधी सको था। वधिक खबरूं जी तफसील वास्ते तवां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो करे सको था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान मथा सुझावित फौजी हमलो फिलहाल टारण जो फैसलो कयो है। राष्ट्रपति ट्रंप मुताबिक ईरान ने ओलह एशिया जे कुछ मुल्कन जे अर्ज ते गाल बोल जो वज देण लाए यो फैसलो वरतो वियो आहे। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स जो खिताब खटियो आहे। यो तन्वी जो पहिरों BWF वर्ल्ड टूर खिताब आहे। फाइनल में तन्वी वियतनाम जे छहीं जाए हासिल थियल खिलाड़ी गुएन थुई लिन्स के हारायो। 17 सालन जी तन्वी ताइवान जे ताई जू यिंग के पुठते छॾंदे सभ खां घट उमिरि वारी ताइपे ओपन चैंपियन बणी आहे। 2008 में साइना नेहवाल बहद इहो खिताब हासिल करण वारी पहिरीं भारतीय महिला पिणु आहे ऐं कॉमनवेल्थ रांदियुनि ॾांहुं रुख कंदे।
3: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंघास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने

0: पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिंगली वेंकैया जी 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पण की। श्री नायडू ने पिंगली वेंकैया कौमी झंडे जो निर्माता हो, जे तिरंगे जरिए देशभक्ति की भावना मजबूत कई हुई। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज नई दिल्ली में साइक्लोथॉन जो आयोजन कयो। यो आयोजन 79 आजादी के डी तहत कयो वियो। नौजवान कार्यक्रम में रांधुन मंत्री मनसुख मंडविया, बचाव राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में इनके साई झंडी डेखारींदे रवानो कयो वियो। आखिर में मुख्य खबरों एक दफो बीहर बुधंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तरक्की भारत जो मकसद हासिल करने लाइ नौजवानन के शारीरिक तौर से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत ए आत्मविश्वास से भरपूर रहने जो सॾु ॾिनो आहे। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुभ शुरुआत कंदे श्री मोदी चयो त नौजवानन के नशे का परे रहंदे सेहतमंद जीवन शैली अपनायण घुर्जे। केरल में तेज बरसात वगे जान माल जो नुकसान, 8 मानू मौत जो बख बणिया, हजारे मानुन के राहत शिविरन में पहुंचाया वियो। एरांदन में बैडमिंटन में भारत जी तन्वी शर्मा ताइपे ओपन में पेंजो पैरों BWF वर्ल्ड टूर खताब खटियो। ग्लासगो कॉमनवेल्थ रांदन जो अज आखिरी डी भारत 13 सोनन तमगन समेत कुल 39 तमगा खटंदे चौथी जाए ते रहो। इत खबरों पूरी थी। नमस्ते।
2: आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणीना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે વિકસિત ભારત માટે નશામુક્ત યુવા સંકલ્પ અભિયાનનો નવી દિલ્હીથી પ્રારંભ કરાયો. ગાંધીનગરના કોબા ખાતે 62મા સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વૃક્ષારોપણ અભિયાનનો પ્રારંભ કરાવ્યો. જિલ્લામાં વિકાસ કાર્યોને અસરકારક અમલીકરણ, સચોટ ડેટા સંગ્રહ અને ફિલ્ડ મોનિટરિંગને આધુનિક બનાવવા માટે નીતિ તારા ડિવાઇસ અંગે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે એક દિવસીય તાલીમ કાર્યક્રમ યોજાયો. રાજ્ય સરકારે તાલુકા આયોજન સમિતિ અને એટીવીટી તાલુકા કાર્યવાહક આયોજન સમિતિઓને મર્જ કરીને 18 સભ્યો ધરાવતી યુનિફાઇડ તાલુકા પ્લાનિંગ કમિટીની રચના કરી. પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળે જુલાઈ માસ દરમિયાન વ્યાપારી, માલ પરિવહન અને ઓપરેશન ક્ષેત્રે સર્વાંગી શ્રેષ્ઠ કામગીરી નોંધાવી કુલ 763 કરોડની આવક મેળવી નવો વિક્રમ સર્જ્યો. કામધેનુ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન પશુ ચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય ભુજને 1 વર્ષ પૂર્ણ થતાં પ્રથમ સ્થાપના દિવસની ઉજવણી વિવિધ સેવાકીય, શૈક્ષણિક અને આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમ સાથે કરી. જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે આજે સૌથી વધુ મુંદ્રામાં 27 મિલીમીટર, અંજારમાં 4, માંડવીમાં 3, અબડાસા અને લખપતમાં 2 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો. અબડાસા તાલુકાના રહેવાસીઓને પોલીસ વિભાગની લગતી કામગીરી માટે ભુજ સુધી ના ઉપડે માટે રાજ્ય પોલીસ દ્વારા નલિયા ડિવિઝન SDPO કચેરી કાર્યરત કરાઈ. કચ્છ મ્યુઝિયમ ખાતે કચ્છ યુનિવર્સિટીના દ્રશ્યકલા વિભાગની તૃતીય વર્ષગાંઠ નિમિત્તે હાસ્ય કલાકાર પદ્મશ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડના પ્રથમ ચિત્ર પ્રદર્શનનું આયોજન કરાયું. મુખ્ય સમાચાર પૂરા થયા.

0: राम धुलिया।
1: जय राम जी की भाई।
0: साहब सरकार के लौटे नहीं अभी?
1: अभी तो नहीं आए।
0: गुलदस्ता बना लाया हूँ, आए तो कह देना, मोतिया के फूल अभी खिले नहीं है इसीलिए नहीं लाया, कहीं वो बरस पड़े और कल से मेरी जगह कोई और माली आ जाए।
2: नमस्ते साहेब।
3: नमस्ते। कोई टेलीफोन आया था?
2: जी नहीं।
3: और हमारी सेक्रेटरी चपल आई या नहीं?
2: जी नहीं, अभी वह नहीं आई।
3: ये क्या हाल बना रखा है अपना?
2: साहेब मेरा बच्चा जीवन सख्त बीमार है।
3: क्यों, क्या हुआ उसे? अच्छी तरह दवा दारू करो, जो पैसा चाहिए वो हमसे ले जाओ।
2: मेहरबानी है आपकी साहेब, अगर आप कहें तो आज मैं
3: देखो बाहर कौन है।
2: जी अच्छा।
4: गुड मॉर्निंग वर्मा साहब।
5: नमस्ते वर्मा साहब।
3: नमस्ते नमस्ते। आओ रीटा बैठो। केशवानी सुनो, कैसी तबीयत है, कहाँ हुआ?
4: जी हमारे ड्रामा क्लब का नया नाटक अदाकार हो रहा है, उसकी टिकट बुक्स और पोस्टर लाई हैं, ये देखिए।
3: वाह बहुत खूबसूरत डिजाइन बनवाया है। आजकल तुम्हारे ड्रामा क्लब की अच्छी धूम है शहर में।
5: सब आपकी बदौलत है, जब से आप मेंबर बने हैं क्लब की हालत सुधर गई।
4: पिछले ड्रामे में अगर आप 500 रुपीज ना देते और अखबारों में हमारी पब्लिसिटी ना कराते तो हमारी तो पोजीशन ही बिगड़ जाती।
3: वो तो खैर मेरा फर्ज है, ड्रामे का शौक तो मुझे बचपन से ही है लेकिन पूरा करने का मौका ही नहीं मिला।
5: देखने में आप अच्छे खासे एक्टर मालूम होते हैं। सच मानिए जब मैंने पहले दिन आपको देखा तो समझी थी कि आप
3: एक्टर।
4: वर्मा साहब इस बार बताइए कितने टिकट दे जाएं आपको?
3: 200-300 के दे दो, बांट देंगे यार दोस्तों को।
1: चाय साहेब?
3: हाँ धुलिया रखो।
5: वर्मा साहब अखबारों में अभी से पब्लिसिटी भिजवा दीजिए, फिर आप भूल जाएंगे।
3: नहीं तो सेक्रेटरी आती ही होगी, आज ही लिखवा लेता हूँ।
4: आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हैं।
5: अभी मत बताओ रीटा, पहले इनसे मिठाई खिलाने का वादा लो।
3: मिठाई जितनी चाहे खा लेना, मगर बात क्या है?
4: ड्रामा डायरेक्टर ने इस ड्रामे में हीरो का पार्ट आपको दिया है और ये रहा आपका लिखा हुआ पार्ट।
3: और हीरो?
5: जी हाँ, उन्हें आपकी चाल डाल लबो लहजा बहुत पसंद है। और हाँ कहते थे आप माइंड ना करें, पार्ट तो एक दुखी नौकर का है मगर नौकर ही ड्रामे का हीरो है।
4: और हाँ डायरेक्टर साहब ने तो ये पार्ट किसी असली नौकर को भी दे रखा है, मगर हम सब तो यही चाहते हैं कि ये पार्ट अच्छी तरह से तैयार करके आप ही करें।
3: वो तो सब ठीक है रीटा, मगर वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, मैं आखिर कैसे कर सकता?
4: वर्मा साहब हमें अगर कोई हीरोइन का पार्ट देता तो हम तो एक ही दिन में तैयार कर

0: फिर ये पार्ट आपको रिहर्सल में तो याद हो ही जाएगा।
1: जी हाँ, आपको तो सिर्फ एक दुखी गिड़गिड़ाने वाले नौकर के एहसास, चाल ढाल, बोल चाल वगैरह को समझना है। रीता, तुमने उस हॉलीवुड के एक्टर के बारे में?
0: हाँ वर्मा साहब, हॉलीवुड के एक एक्टर के चेहरे पर गुस्से का भाव आता ही में था, तो उसने क्या किया कि राह चलते राहगीर को कंधा दे मारा।
2: अच्छा।
0: और राहगीर ने जो ही पलटकर गुस्से से देखा तो खट से नोट कर लिया कि गुस्से में किस तरह नथने फूलते हैं, माथे पर तीवर चढ़ते हैं और होठ सिकुड़ते हैं।
1: इतनी दूर क्यों जाती हूँ रीता? अपने मशहूर स्टेज एक्टर शहनाज को ले लो। एक बार उन्हें गरीब चपरासी का पार्ट अदा करना था, तो उसके लिए उन्होंने खुद अपने चपरासी पर तजुर्बा किया।
2: वो कैसे?
1: ऐसे कि वो उसे रात दिन झिड़कते रहते, उस पर गुस्सा करते रहते और इसका जो असर चपरासी पर होता उसकी नकल करते रहते।
2: वाह वाह भाई, बहुत खूब मिसालें दी आप लोगों ने।
0: अच्छा वर्मा साहब, अब हम चलते हैं।
2: बैठिए ना, इतनी जल्दी क्या है?
0: नहीं नहीं वर्मा साहब, अचानक हमें याद आया कि 2 बजे एक जगह और भी जाना है। वर्मा साहब याद रखिए, आपका पार्ट बहुत रोने गिड़गड़ाने का है।
2: अच्छा अच्छा,
0: अच्छी तरह से तैयार कीजिए।
2: हाँ, हाँ, अच्छा भाई, कोशिश करूंगा जरूर। अच्छा अच्छा,
1: बाय बाय।
0: बाय बाय।
2: नमस्ते नमस्ते। तो नौकर का पार्ट करना है, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। शाहनाज ने चपरासी का पार्ट करने के लिए चपरासी को स्टडी किया था, उस पर बनावटी गुस्सा, तो मैं भी अपने नौकर के पार्ट के लिए यानी नौकर के पार्ट के लिए अपने नौकर। ठीक है ठीक है,
3: ये लीजिए साहब, लिफाफे, पोस्ट कार्ड और टिकट।
2: कहाँ मर गया था
3: जी? आप ही ने तो भेजा था डाकखाने लिफाफे लेने को।
2: लिफाफे का बच्चा जब देखो जब गायब रहता है।
3: जी मुझे तो आपने
2: ही... और उल्टा मुझ पर ही बात डाल रहा है।
3: जी मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा, मैं सच कहता हूं।
2: देख लिया तुम्हारा सच, झूठ बोलना तुमने पेशा बना लिया है।
3: साहब भगवान मेरा जानता है, मैंने आज तक आपसे झूठ नहीं बोला। मैं तो बस डाकखाने तक गया हूं और उल्टे पैरों वापस आया हूं, मुझे कसम दिलाई लीजिए।
2: हाँ दिला रखी है कसम, जाओ काम देखो अपना।
3: जी बहुत अच्छा।
4: रीटा और केशवानी कहती तो ठीक ही थी कि एक्टिंग में असर लाने के लिए जिंदगी के असल किरदारों को ही समझना चाहिए।
2: साहब साहब भगवान मेरा जानता है, मैंने आज तक आपसे झूठ नहीं बोला। ना, ना, ना। आवाज में कुछ और गरीबी आनी चाहिए।
3: मुझसे कसम ले लीजिए हुजूर, मैं तो बस उल्टे पैरों डाकाने से
2: नहीं नहीं नहीं, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हौसला लाना पड़ेगा।
5: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
2: चपला, इतनी देर कैसे हो गई? तुम प्राइवेट सेक्रेटरी हो या अफसर?
5: जी घर में मेहमान आ गए थे, ये पोस्टर कैसा पड़ा है? अदाकार?
2: हाँ, एक ड्रामा हो रहा है, हम इसमें हीरो का पार्ट कर रहे हैं।
5: सचमुच? फिर तो हमें भी देखने का मौका दीजिए, ड्रामा में पार्ट करने का तो मुझे भी बहुत शौक है।
2: अच्छा देखो, पहले सारे किराएदारों के किराए की रसीदें बनाओ और उनके पास भिजवा, बहुत जरूरी है।
5: अभी जाती हूँ।
2: धुलिया
6: जी कहिए,
2: कल दुबे जी का सामान वक्त पर क्यों नहीं पहुंचा कर आए?
6: जी जी मैं आपके कहते ही दे आया था।
2: वो कहते थे तुम शाम के 5 बजे वहां पहुंचे थे।
6: जी नहीं, मैं सुबह 11 बजे देकर आया हूँ।
2: इसका मतलब है वो झूठ बोल रहे हैं। धुलिया हर आदमी तेरी शिकायत करता है, याद रखो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा।
6: नहीं साहब ऐसा ना कहिए, मेरी नौकरी न छीजिए, मेरे साथ 3-3 पेट बंधे हुए, मैं कहां अपना परिवार लिए लिए धंधा ढोकरे खाऊंगा। मैं कभी आपकी सेवा में कमी नहीं करूंगा सर।
2: बस बस रोना धोना बंद करो, बाहर जाओ।
4: वाह, ये ना कुछ बात।
6: साहब साहब मेरी नौकरी मत छीनिए, मेरे साथ 3-3 पेट लगे साहब, मैं कहां कहां मारा मारा फिरूंगा।
4: पहले से अच्छा है, मगर अभी नौकर वाली गिड़गड़ाहट नहीं आ रही।
6: मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, घर से खबर भिजवाई है कि छुट्टी लेकर जल्दी चला। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है, मेरे बच्चे जीवन की हालत बहुत खराब है साहब, मेरे बच्चे की हालत खराब है साहब, मुझे छुट्टी दे दीजिए।
2: देखा, अभी अभी कसम खा रहा था, अब लगा छुट्टी मांगने। एक मामूली नौकर होकर भी तुझे ये 100 रुपए की नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, हम तेरी पूरी तरह से छुट्टी कर देते हैं, आज से तेरी नौकरी खत्म।
6: नहीं नहीं सर।

0: तुम कीजिए, तरस खाइए। मेरे साथ में, मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, नौकरी मुझे कोई नहीं मिलेगा, सरकार मेरी नौकरी ना छीनी है
1: ओ, बस
0: मुझे।
1: बस बाहर बैठो, हम अभी तुम्हारा हिसाब कर देते हैं।
0: रहम खाइए सरकार, मुझे जीते जी ना मालिए।
1: ओह, तुम ऐसे नहीं मानोगे, बुलाऊं किसी को, बाहर निकलाऊं धक्के दिलवाकर।
0: जाता हूँ सरकार, लेकिन रहम खाइए भाई बाप।
1: वंडरफुल, एक्सीलेंट, ये हुई ना बात। ऐसी एक्टिंग अगर मैं कर दूं तो बस।
2: नहीं नहीं साहब, ऐसा जुल्म मत कीजिए सरकार, मुझ पर तरस खाइए। मेरे हाथ में कोई हुनर नहीं है सरकार, जेब में पैसा नहीं है, मुझको तो कोई भीख मांगने पर भी नहीं मिलेगी सरकार। सरकार मेरी कौन है?
3: डायरेक्टर साहब, मिजाज शरीफ।
4: दुआ है, नजरे इनायत हैं, जी रहे हैं अपने सहारे।
3: डायरेक्टर साहब, वो साहब आपके साथ बाहर खड़े हैं ना?
4: जी हाँ जी हाँ। अरे बेटा सलवेट, अंदर आ जा। अरे वहां क्यों खड़ा है?
3: जी हाँ जी हाँ, अंदर आइए।
5: आ जाऊं चाचा जी?
4: हाँ हाँ, आ जा बेटा आ जा।
3: इनकी तारीफ?
4: जी हमारे क्लब के नए मेंबर हैं मिस्टर सलवेट, वैसे रिश्ते में मेरे भतीजे होते हैं, आजकल बेकार थे, मैंने सोचा इनसे कोई पार्ट कराया जाए, जरा शर्माते ज्यादा।
1: सिल्वर साहब, आपको एक्टिंग का कब से शौक है?
5: जी बता दूं चाचा जी?
4: हाँ हाँ बेटा, अपने ही आदमी हैं।
5: जी मैं बचपन में रामलीला किया करता था, एक बार मैंने...
1: जी हाँ, शर्माइए नहीं, कहिए।
5: बता दूं चाचा जी?
4: तू तो शर्माने की हद कर रहा है सिल्वर।
5: जी मैंने स्वरूप नखा का पार्ट किया था एक बार।
1: वाह वाह, तो आप लड़कियों का पार्ट भी करते हैं, और इस ड्रामे में भी आप कोई पार्ट कर रहे हैं?
5: जी हाँ।
1: क्या पार्ट कर रहे हैं?
5: बता दो चाचा जी।
4: बता दो बेटा।
5: जी भरगुंजे का।
6: वर्मा साहब, रसीदें तैयार हो गई हैं।
4: वर्मा साहब, मैंने अपने नए ड्रामे में एक नई लड़की के लिए आपसे जिक्र किया था, याद है ना?
1: अरे हाँ डायरेक्टर साहब, इनसे मिलिए, मिस चपला, मेरी सेक्रेटरी, ड्रामे का बहुत शौक है इन्हें।
4: ओहो मिस चपला, मैं आपसे कुछ डायलॉग बुलवा कर देखना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज?
6: जी नहीं, बड़े शौक से बुलवाइए।
4: अच्छा तो यूं समझिए कि ये मिस्टर सलवट हीरो हैं और आप हीरोइन, आप इनसे कहती हैं, मोहन मैंने तुम्हारे लिए समाज छोड़ा, घर बार छोड़ा, मगर तुमने मेरी तरफ कभी मीठी निगाहों से नहीं देखा, आखिर क्यों? इसे बोलिए।
6: बहुत अच्छा, मोहन मैंने तुम्हारे लिए समाज छोड़ा, घर बाहर छोड़ा, मगर तुमने कभी मेरी तरफ मीठी निगाहों से नहीं देखा, आखिर क्यों?
5: जी बता दूं चाचा जी?
4: बता दूं के बच्चे, तुझे अपना डायलॉग बोलना था, सब खेल बिगाड़ देता है। खैर अच्छा, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, कभी हमारे क्लब में आइए।
6: जी बहुत अच्छा, मैं जाऊं वर्मा साहब।
4: हाँ जाओ वर्मा साहब, हमने रीता और किशवानी को आपके पास।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, आपका पैगाम मुझे मिल गया है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है।
4: वेरी गुड।
1: इसके लिए मुझे अपने नौकर से बहुत कुछ सीखने को मिला।
4: जी वो कैसे?
1: रीता ने शाहनाज एक्टर की मिसाल दी थी कि चपड़ासी का पार्ट करने के लिए उसने अपने चपड़ासी को स्टडी किया, तो इसी तरह मैंने नौकर का पार्ट करने के लिए अपने नौकर को स्टडी किया।
4: जरा बताइए तो कैसे स्टडी किया और क्या सीखा आपने?
1: मैंने यूं ही झूठ मूठ उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दी, उस पर वो कैसे गिड़गिड़ाया सुनिए।
4: बोलिए।
2: साहब मुझे नौकरी से ना निकालिए, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरे साथ 3-3 पेट बंधे हैं साहब, मुझ पर रहम कीजिए साहब, मेरे हाथ में हुनर नहीं है, जेब में पूंजी नहीं है साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब।
4: मैंने कहा नहीं साहब,
1: मैंने कहा सुनिए एक्टिंग कैसी लगी आपको?
4: अरे साहब सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया आपने।
1: आपको कैसी लगी सिल्वर साहब?
2: बता दो चाचा जी।
4: हाँ बता दो बेटा, बता दो, तुम भी बता दो।
2: आपने तो मुझ पे भी अच्छी एक्टिंग की।
1: डायरेक्टर साहब,
4: हाँ जी,
1: सीखा तो बहुत कुछ, पर मुझे बहुत रहम आया अपने नौकर पर, कहता था कि उसका बच्चा बहुत बीमार है।
4: तो अब आप और न सीखिए, उसे 10-20 रुपए इनाम दे दीजिए और कहिए कि उसे नौकरी से निकाला नहीं है आपने।
1: हाँ उसे बुलाकर कह देता हूँ कि तुझे नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि नौकरी की एक्टिंग सीख रहा था।
7: तो साहब मेरा रोना धोना ही कौन सा असली था, मैं भी तो
4: अरे धुलिया तुम? अरे वर्मा साहब ये भी क्लब के मेंबर हैं, दरअसल ये नौकर का पार्ट इन्हीं को दिया था मैंने।
7: मगर नहीं डायरेक्टर साहब, अब तो वर्मा साहब से ही कराइए, मैं इनसे अच्छा नहीं कर सकता। और हाँ मेरा इनाम
0: दे दो चाचा जी,

त्रिलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी। इस गाने को गाया है अभिजीत सिंह और रोचक कोहली ने। गीत कुमार का है, संगीत रोचक कोहली का।

अभी आपने अरिजीत सिंह और रोचक कोहली को सुना, फिल्म थी सोनू के टीटू की स्वीटी। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी को, फिल्म है आर आर आर, गीत रिया मुखर्जी का है, संगीत एम एम करीम का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में
2: बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैसे कह सकते हैं इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आंखों थी आंखों में इशारा हो गया।
3: आइए अब सुनते हैं छिछोरे फिल्म का गाना तुषार जोशी की आवाज में, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीतम का।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जनभागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: आम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जनभागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
4: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में

0: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माय भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में AI दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
3: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट

0: प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

विविध भारती के दोस्तों नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज सलाम एक महान संगीतकार की प्रतिभा को। एक संगीतकार जिसकी धुनों में ताजगी है और सुकून का ऐसा वरदान है जो कम ही कलाकारों की कला को नसीब होता है।

जयदेव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि संगीत की दुनिया में उनका स्कोर 100% है। आप जयदेव की कोई भी ऐसी रचना नहीं ढूंढ पाएंगे जिसमें उत्कृष्टता ना हो।

आज के इस कार्यक्रम में आपका ये दोस्त चाहता है कि जयदेव की संगीत यात्रा को पूरी तरह से उतार कर रख दिया जाए। बहुत कठिन है गागर जैसे समय में सागर जैसा संगीत भर देना।

गजलों को स्वरबद्ध करने की चुनौती जयदेव ने खूब निभाई। आइए एक के बाद एक जयदेव की स्वरबद्ध कुछ गजलें सुन लें।

गजलें हों या कविताएं, जयदेव की संगीत रचना का विस्तार हर विधा तक पहुंचा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला के कुछ पद उन्होंने संगीतबद्ध किए, इन्हें गाया मन्ना डे ने।

0: थारे ना ना ना बिच थारे ना जाओ शाम पैया परू बिच थारे ना जाओ शाम।
1: फिल्म घरौंदा की रचना जो साबित करती है कि आधुनिक ढंग के गीत बनाने में जयदेव पीछे नहीं थे।

जयदेव की संगीत रचनाएं हमें सुकून देती हैं, हमारे मन में शांति का एक राग छेड़ देती हैं ये संगीत रचनाएं।

0: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश कुखले।
1: आज के फनकार।

0: बैंड प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
1: नमस्कार, इन टुडेज एडिशन ऑफ अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा वी आर प्लीज टू प्रेजेंट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय द रेनाउंड वोकलिस्ट श्री सुधाकर देवले।
0: एक संगीतमय परिवार में जन्मे देवले जी ने अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिकल फैमिली, श्री देवले रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक फ्रॉम हिज मदर द लेट श्रीमती लता देवले। लेटर ही स्पेशलाइज्ड इन टप्पा सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री रघुनाथ वाघ ऑफ द ग्वालियर घराना। फर्दरमोर अंडर द ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा ही रिसीव्ड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन खयाल, ठुमरी, नाट्य संगीत एंड भजन्स फ्रॉम द पद्मश्री रेसिपिएंट पंडित जितेंद्र अभिषेकी।
0: तानसेन, कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत हैं।
1: एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, श्री देवले हैज डिलीवर्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस एट प्रेस्टिजियस नेशनल फेस्टिवल्स सच एज द तानसेन, कालिदास एंड सवाई गंधर्व फेस्टिवल, as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya Awards.
0: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain, Pyare Degar Lagi, jo ek taal mein nibaddh hai. Drut khayal ke bol hain, Chalo Hato Ji Chhel, Kahe Roke Gail, jo tritaal mein hai. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू थ्री ताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा के आज के इस आयोजन में हम सुप्रसिद्ध गायक श्री सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय

0: राग पुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना की बोल है बर्निन जाए सखी, जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना की बोल है बेरी बसंत अब आयोरी, जो त्रिताल में है।
1: दैट वॉज अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय श्री सुधाकर देवले इन राग पुरिया। श्री देवले विल नाउ प्रेजेंट राग बसंती केदार सेट टू झपताल विद द लिरिक्स बर्निन जाय सकी, सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स बेरी बसंत अब आयोरी।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारी दानी दीम।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ श्री सुधाकर देवले जी इन राग बसंती केदार। श्री सुधाकर देवले इज कंक्लूडिंग हिज प्रोग्राम विद तराना इन राग हंस ध्वनि सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स दारा दिम तदारे दानी दिम।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे।

0: और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BMZ कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
0: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including My Bharat and National Service Schemes volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Under this scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded depending on the specific circumstances. Compensation of 5 lakh rupees has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and cases of prisoner suicide. All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat, and Madhya Pradesh tomorrow. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat, and Datia in Madhya Pradesh were held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 a.m. tomorrow. The self-enumeration facility for Census 2027 has commenced in Assam from today. Citizens can now submit their household and individual details online through the dedicated portal se.census.gov.in. The self-enumeration facility will remain available until August 16, ahead of the house listing operation and housing census scheduled to begin on August 17. Over 88 lakh 6,000 enumeration forms across the national capital have been digitized as of today. According to the Office of Chief Electoral Officer of Delhi, about 1 crore 45 lakh forms have been distributed as part of special intensive revision of electoral rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. Electors can fill the enumeration form online at www.voters.eci.gov.in. In Odisha, the flood situation is improving as Mahanadi River recedes. However, the situation remains challenging in the worst affected districts. Shortages of drinking water, extensive crop damage and destruction of houses have added to the hardships of flood affected families. The 2026 Commonwealth Games will come to a close with a spectacular closing ceremony at the iconic Hydro Arena in Glasgow tonight. On the occasion, Ahmedabad will receive the Commonwealth Games flag and the host baton in a ceremonial handover during the closing ceremony, marking India as the host for the Centenary 2030 edition. And that is the end of this news bulletin.